0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है। महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: India's unshakable news habit, NDTV.com, is India's number one English news website.
9: Economy, business, world, technology.
10: Noise filtered.
9: Numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
11: Launch control, 0 to 100.
12: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
13: This car makes no sense, yet it makes every sense.
14: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
12: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
4: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
5: सो मेनी अटैक्स,
4: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफाइनिंग इंटरव्यूज।
5: इट्स इनक्रेडिबल।
4: ही हैज सीन हिस्ट्री ब्रेक लाइव अनफिल्टर्ड। 20,000 hours of live broadcasting.
5: Welcome to Left, Right and Center.
4: Hard facts.
5: War struck country.
4: Hard questions.
5: In the Ukraine.
4: 30 years of trust.
6: In the Kargil area.
5: North Ukraine.
7: In France. In Italy.
5: At Srinagar.
7: INSP France.
5: Vishnu Shom for NDTV.
4: Vishnu Shom. Only on NDTV.
8: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
4: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधू,
5: सो मेनी अटैक्स,
4: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफाइनिंग इंटरव्यूज।
5: इट्स इनक्रेडिबल।
4: ही हैज सीन हिस्ट्री ब्रेक लाइव अनफिल्टर्ड। 20,000 hours of live broadcasting.
5: Welcome to Left, Right and Center.
4: Hard facts.
5: War-struck country.
4: Hard questions.
5: In the Ukraine.
4: 30 years of trust.
6: In the Kargil area.
5: North Ukraine. In France. In Italy.
7: At Srinagar.
8: I am Vikrant.
9: Vishnu Shom for NDTV.
4: Vishnu Shom. Only on NDTV.
10: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
12: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।

0: के खिलाफ, ममताज बेगम के खिलाफ। आज वो ममता नहीं है, ममताज बेगम है।
1: आपको कैसे कैसे मारा, क्योंकि आप भाजपा समर्थक?
0: हम भाजपा समर्थक है, हम बूथ में बैठते थे, हम प्रार्थी होते थे बजबत पौरसभा में, इसीलिए हमको मारा पीटा, हमारा बहुत कुछ नुकसान किया और इसीलिए हमको उसका प्रतिबाद कर रहा था। अभी भी हम वहाँ
1: को डर नहीं लगा, लगा नहीं छोड़ दो भाजपा?
0: नहीं, हम कभी।
1: आप बताइए, आपको आपको कभी, आपको कभी मारपीट का सामना करना पड़ा?
2: हाँ, मारपीट का बाद घर भांगा, दुकान भांगा दिया, धमकी दिया, ठीक है, धमकी दिया जी बीजेपी करके कर ले मार देगा, मर्डर कर देगा, हमारा दुकान भांग गया, हमारा घर भांग गया, सब कुछ
0: में हम लोग ये बीजेपी पार्टी के लिए लड़े थे, तो हमारा जो सासू का दुकान है ना, उसको जला दिया पूरा,
3: हमारा घर पूरा जला दिया,
0: जला दिया। हम लोग घर घर से नहीं था, घर से बाहर था,
1: दो महीना
0: घर में
1: भाग गए,
0: भाग गया, पैसा दे के घर आए हैं, पैसा दे के घर आए हैं।
1: किसको पैसा दिया?
0: का जो नेता है उनको पैसा दे के हमको घर आना।
1: सो यू नो यू विल हियर मेनी मेनी सच स्टोरीज, many such stories, and for anyone who thinks that this is a paid crowd, sure, there may be people who've been mobilized from across the state, but you will find countless such people who would have come here to Kolkata almost as a show of redemption. Every person you speak to here on the streets will have a story of how they were beaten, they were threatened. This young woman says her mother-in-law's shop was broken, it was burnt, and she had to stay away from her own house for 2 months. It's only after she paid some extortion money that she was allowed back. So I guess for them it is more an emotional moment. It is almost like a sort of release when they come here today and they see coming to fruition of something that they have struggled for all of this time. In fact, you know, when we speak of struggle, we'd a lot of workers, karyakartas, leaders of the BJP have been jailed here, have had cases filed against them, multiple FIRs. Smriti Irani, former minister, former MP, and somebody who's been a part of the campaign, a very vocal part of the campaign here. I spoke to her earlier. Here's what she told us, and then I'll cut straight across to my colleagues, Shreyasi, Manogya, and the whole team on the ground. A hard-fought campaign, and finally, the day when the first BJP chief minister in West Bengal takes oath, somebody who was the voice of the BJP in Bengali here in West Bengal, Smriti Irani, how does it feel like?
4: There is a sense of not only great joy, but also a very somber moment of saying thank you to families and especially karyakartas that struggled through the years and kept the faith in the Sangathan. It is also, as Home Minister yesterday paid homage to all the workers who died, it is also a reminder that they died so that we could build a very prosperous state, we could build a state where there is justice for all and appeasement of none. So yes, today is a day of great celebration, but it's also a reminder of the responsibility towards citizens in the state of West Bengal.
1: Smriti Irani, main aapse puchna chahti hu, ek personal level par kya aapki yaad hai jo struggle BJP ne kiya hai, kyunki Amit Shah ji ne bhi bola ki 321 karyakartaon ne apni jaan di hai, lekin पूरी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। आप भी इस स्टेट में बार बार आई हैं, संघर्षरत रही हैं।
4: मेरा एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफ कांग्रेस पार्टी यूज़ करती है सिलेंडर के साथ, वो यहाँ धर्मतला का है 2013-14 का, जहाँ पर प्रोटेस्ट के बाद मुझे भी बाकी कार्यकर्ताओं के साथ जेल हुए थे। तो आई थिंक दैट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सृजन या भारतीय जनता पार्टी का उत्थान कोई अकस्मात नहीं हुआ है। बहुत लोगों की जाने गई हैं, बहुत लोगों ने बहुत प्रताड़नाएं सही हैं, लेकिन आपने सड़कों पर जो हुजूम जनता का देखा है, जो उल्लास जनता का देखा है, लिटरली ऐसा कि उनको कोई आज़ादी मिली है, वो अपने आप में संकेत है कि बंगाल में जो साधारण नागरिक है उसका कितना उत्पीड़न हो रहा था। आप खुद रिपोर्टर के नाते जब इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद कई परिचर्चाओं में शामिल हुई होंगी, लेकिन मैं जब अन्य शहरों में थी रिज़ल्ट के बाद, तब वहाँ लोग, साधारण नागरिक आके बोल रहे थे कि वो नहीं जानते थे कि बंगाल की जनता को इतनी क्रूरता का सामना करना पड़ रहा है, अथवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा संघर्ष रहा है।
1: क्या एक लेवल पे आप डिसअपॉइंटेड भी हैं कि जो कुछ बंगाल में चल रहा था उसको वाइट वॉश किया गया, जैसे कि आपने कहा कि पता भी नहीं था ज़्यादातर लोगों को कि बंगाल में हो क्या

0: रहा है। जब यहाँ बम फट रहे थे तो कुछ लोग उसका मीम बना रहे थे, जब लोगों को डराया जा रहा था तो उसको बैक पेजेस में ढके।
1: मुझे लगता है कि एक सबसेट है कुछ लोगों का, जिन लोगों की राजनीति और जर्नलिज्म इस बात पर आधारित थी कि वो कैसे वाइट वॉश करें, लेकिन सत्य परेशान होता है परास्त नहीं होता। और मुझे लगता है बंगाल का ये जो परिणाम है उसी का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपने भी जर्नलिस्ट के नाते इस बात का अनुभव किया होगा कि आपने जब बंगाल में जो हिंसक वारदातें हुई, या फिर हमारे कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से उत्पीड़न हुआ, हमारे कार्यकर्ता की जिस प्रकार से हत्या हुई, उसका जब आपने भी एक कहीं शायद किसी पॉडकास्ट में वर्णन किया था, कई लोग अचंभित थे, उन्होंने सुना ही नहीं था। तो आप सच कह रही हैं कि हाँ, कुछ लोगों की पीआर मशीनरी ऐसी थी कि वो इस ब्लड बात को उभरने नहीं दे रहे थे, लेकिन मुझे लगता है खून सर पर चढ़कर बोला जब बंगालियों ने आकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर भाजपा की सरकार बनाने में योगदान दिया।
0: अभिषेक बैनर्जी ने कहा था कि 4 मई के बाद, 12 बजे के बाद बीजेपी यहाँ पर रह करके दिखाए, क्या कहेंगे आप?
1: मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न मुझसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, तब मैंने कहा था कि शेर पर निर्भर करता है वो गीदड़ को कब पलट कर जवाब दे। लेकिन होम मिनिस्टर ने खुद जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया तो बड़ी ग्रेसफुली कहा कि राजनीति में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, मैं उसको उत्तर नहीं देना चाहता। तो जब होम मिनिस्टर ने इतनी ग्रेस दिखाई है, तब ऐसे व्यक्ति के ऊपर जवाब मैं क्या दूँ, जनता ने ही जवाब दे दिया है।
0: चुविंदु अधिकारी TMC से आए हैं, आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, यहाँ पर TMCification हो गया।
1: शुभेंदु दा ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को अपने योगदान से सींचा भी है। शुभेंदु दा ने यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हमारे नेतृत्व के साथ संघर्ष भी किया है, आज की जो जीत है उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए अपने ही पार्लियामेंट्री बोर्ड को सेकेंड गेस करना, अपने ही नेतृत्व को ऊँचा दिखाना, ये मुझे नहीं लगता भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता का संस्कार है। ये मानना होगा कि श्रमिक दा और पूरी जो हमारी इकाई है पश्चिम बंगाल की, उन लोगों ने बहुत प्रयास किए, बहुत संघर्ष किया, बड़ा परिश्रम किया, और ये सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। तो एक कार्यकर्ता के नाते न सिर्फ निर्णय की हमें सराहना करनी है, लेकिन एक आम नागरिक के नाते भी भारतीय जनता पार्टी ने एक सामूहिक निर्णय लिया है, और उस निर्णय को हम लोग बंगाल की प्रगति के लिए समर्पित कर रहे हैं।
0: Okay, my colleagues Shreyasi, Raman and Tanushka are all joining us live. But before I go across to them, I want to show you Tinku ji, who has also traveled to Kolkata with a t-shirt of Narendra Modi. And then on the back, he's got Operation Sindoor over here. So, rife with symbolism, everything is a Tinku ji. Kitne saal se ho aap?
2: 20 saal se jaya.
0: 20 saal se bhajpa mein?
2: Bhajpa mein.
0: Kyun bhajpa aapne join ki?
2: Hum bhajpa mein isliye pahle, Hindu ka hai. Hindu ka hai. 3 तारीख जो था हमारे घर में आके बल गया, 4 तारीख आएगा तो हमारा घर तोड़ देगा तृणमूल पार्टी।
0: ओके, सो यू हर्ड हिज रीजनिंग देयर, ही सेज आई एम अ हिंदू सो आई एम इन द बीजेपी। श्रेयसी, गोइंग कमिंग अक्रॉस टू यू, आई थिंक अ वेरी वेरी पॉइग्नेंट मेमोरियल हैज ऑल्सो बीन पुट अप इन द लास्ट कपल ऑफ डेज सिंस द 4th of May। वी हैव हर्ड द बीजेपी स्पीक अगेन एंड अगेन ऑफ द 321 कार्यकर्ताज, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अ नंबर हैज बीन पुट टू इट। व्हेन यू हियर ऑल ऑफ दीज स्टोरीज ऑफ पीपल हु आर स्ट्रीमिंग इन टू द सिटी, 321 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स in the years leading up to the BJP forming its first government in West Bengal. In political violence, they were killed, they were shot, but there are countless others who still were injured, their properties destroyed. Still, we do not know their names. And now a memorial at Brigade Parade Ground has been put up to all of those karyakartas. Shreyasi.
3: Absolutely, and Padmaja, yesterday also when Shubhendu Adhikari was addressing the legislative party meeting, after his name was officially announced as the Chief Minister of West Bengal, he remembered them, because the BJP has fought tooth and nail against the Trinamool Congress. There has been post-poll violence, there has been political violence, something that is entrenched in West Bengal's politics. But today, all roads lead to the Brigade Parade Ground. It's a historic day in West Bengal politics and in India's political history. For the first time, the BJP is forming government here in West Bengal since independence. And you know, people, you can see carrying the cutouts of Narendra Modi. Dada, kahan leke ja rahe ho Modi ji?
4: Jai Shri Ram!
5: Jai Shri Ram!
3: Kahan leke ja rahe ho Modi ji ko?
4: Brigade Parade mein Modi ji ka paas mein Modi.

0: अच्छा हाँ, तो फिर यहाँ पर बंगाल में सरकार बनी है पता है भाजपा की, तो क्या उसका महत्व है आपके लिए, क्या फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में?
1: अच्छा ही होगा,
0: क्या अच्छा होगा,
1: जो होगा अच्छा ही होगा देश के लिए।
0: बताइए आंटी क्यों आए हो आप यहाँ पे?
2: मोदी सरकार के देखने आए हैं।
3: मोदी सरकार,
2: हाँ
0: ठीक है। लेट मी गेट इन नीलांजन मुखोपाध्याय एंड जयंत घोषाल एंड महुआ चैटर्जी, ऑल ऑफ अस जॉइनिंग अस लाइव ऑन दिस मॉर्निंग। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डे कैनॉट बी अंडरस्कोर्ड इनफ। द फैक्ट दैट यू हैव गॉट जयंत दा दिस एंटायर इवेंट हैपनिंग ऑन अ डे व्हेन इट इज रविंद्र जयंती। On Rabindra Jayanti, very well thought out, and I just want to point out the backdrop of this entire stage where the Prime Minister is going to be sitting, where all the NDA chief ministers are going to be there, and where the oath is going to be administered to Shuvendu Adhikari and the other ministers. You've got Rabindranath Tagore, you've got Shyama Prasad Mukherjee, all of them depicted on that massive stage at Brigade Parade Ground. Jayantoda.
4: Exactly. Padmaja, today, you know, this is a celebration day of Bengalis because it is Pochishe Boishak. So the birthday of Rabindranath Tagore, we used to go to Jorasanko, we used to go to Shantiniketan, all these places where, you know, today, this is a very conscious decision and Prime Minister announced, the head of the state, because the campaign of the opposition was that you are disconnecting the Bengali identity and it is an invasion of Hindi and Hindu nationalism, all these things. Now, the most interesting part is that since morning, I am listening Tagore songs in that area. And now, on that Tagore day, that means with Modi guarantee, now you are connecting the mainstream politics. The first time after 77, CPM was there, TMC was there, the Prime Minister was not their party. It's not CPM's Prime Minister, it was not TMC's Prime Minister. When Siddharth Shankar Rai was the last Congress Chief Minister, it was Congress Prime Minister and Congress Chief Minister. Now, this federal unity of the Prime Minister and Chief Minister is not only a double engine. You are connecting with the Bengali identity all now. So now this lady you are talking to, she was saying that Modi ji power mein aaya. Matlab, I was remembering that when Indira Gandhi was there, people used to come and used to say, Rajiv Gandhi ko bhi dekhke bolta tha ki I have come to see Indira Gandhi. So this myth now in Bengal, I think after Indira Gandhi, no was there. Now Narendra Modi has achieved that mythology in the Bengali psyche also. We have to accept it. I mean, now the Shubhendu government...
0: You say that it's almost a... It's almost a myth-like, you know, a presence that the Prime Minister has for a lot of people, like you mentioned, not just in West Bengal, but in many states that one travels to across the election. Here also the binary was Didi or Dada, where Dada was Narendra Modi, not Shuvendu Adhikari in popular discourse. Let me bring in Mahua Chatterjee and Nilanjan Mukhopadhyay as well. But very quickly, I want to ask this gentleman, because he's been standing very patiently and quietly. Kidhar se aaye hain?
5: हम ठाकुरपुर से आए हैं, ब्याला ठाकुरपुर।
0: अच्छा, ब्याला से आए हैं, वहाँ पे भाजपा जीत गई
5: एकदम।
0: यस, पहले वहाँ टीएमसी थी ना?
5: यस, राज करती थी, राज करती थी।
0: पर कैसे फिर भाजपा आई?
5: बस भाई, वोट देने से अच्छी तरह जो आर्मी था ना, वो हम लोग मतदान नहीं दे पाता पक सकते, इसलिए अब नरेंद्र मोदी जी, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, तो जो आर्मी दिया था ना, तो मतदान रात 9 बजे तक हुआ था, इसलिए हम लोग जीत गए।
0: ये बताइए, आप हमेशा यहाँ से बंगाल में ही रहे हैं, बंगाली हैं आप?
6: हाँ, हमें बंगाली आछी, किंतु हमरा गर्वित जे आज के रे हमरा जे 2021 जे निर्वाचन हुई छिलो।
0: नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कहते हैं कि भाजपा को तो बंगाली वोट ही नहीं देते।
6: नहीं, सब वोट नहीं देते, हम लोग देते हैं। हम लोग पहले से बीजेपी था, अभी रहेंगे, हर जीवन रहेंगे। मोदी जी जिंदाबाद।
0: नाम बता दीजिए।
6: मेरा नाम अक्षय कुमार प्रामाणिक है, हम कलकत्ता ब्याला से है, ठाकुरपुर से।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे अक्षय जी मिल करके, बहुत मंडल जी आपसे भी अच्छा लगा मिल करके। अंकल आए हैं यहाँ पे, एक
7: बहुत दरकार छिलो पलटे गए,
0: पलट गया। नाम क्या है, थोड़ा हिंदी बोलो।

0: Sita ji, she drank out of the Sita Kund. And all the people who visit the temple, who visit Ayodhya Hills, are all tribals. So perhaps, you know, the disconnect between a tribal identity and the Hindu identity is not as stark as one would think, was my experience in Purulia. Very quickly, I would like to get a few words in from people who now want to be heard. Ek second, aram se, aram se. Kahan se aaye? ठीक है, कहाँ से आए?
1: कांटा से आया है.
0: कांटा? अरे शुभेंदु जी के घर से?
1: शुभेंदु जी के घर से आए.
0: आप तृणमूल के टाइम से थे उनके साथ?
1: नहीं नहीं नहीं,
0: सच बताओ.
1: हाँ.
0: तो पहले वो तृणमूल पर कांटा से लड़ करके गए थे 20 साल पहले, अब देखो भाजपा के मुख्यमंत्री बन गए.
1: हाँ, बहुत खुश है.
0: बहुत खुश है. क्या चाहते हो शुभेंदु अधिकारी से?
1: बहुत काम होगा, सब कुछ होगा, सुरक्षा रहेगा, सब कुछ मिलेगा.
0: क्विक बैक स्टोरी, शुभेंदु अधिकारी for the first time was elected to the Legislative Assembly of West Bengal on a Trinamool ticket in 2006, way back in 2006, exactly 20 years ago. His father, Shishir Adhikari, and he comes from a family of politicians. His brothers are into politics, two of his brothers. He himself is now the Chief Minister. His father, Shishir Adhikari, originally was in the Congress, then moved to the Trinamool Congress, and he was Mamata Banerjee's right-hand man in the Nandigram Shingur agitation. And look where things have come now. Aap sab bhi kaunta se aaye hain?
2: हम हुगली से, हुगली से आए.
0: अच्छा, हुगली में तो फिर एक ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था.
2: नहीं नहीं नहीं,
0: वो हुगली ने क्यों वोट किया?
2: पूरा सुपरा साफ हो गया. अच्छा, पूरा तृणमूल का पूरा सुपरा साफ हो गया.
3: ममता बनर्जी ने चोरी नहीं कर पाया क्योंकि पिछले 15 साल ममता बनर्जी चोरी करके बंगाल में आ चुका है था. अभी बंगाल की जनता जाग चुका है. जो चोरी, वो चोरी अब नहीं कर पाया. इसलिए
0: आगे की बात करते हैं, क्या चाहते हैं आप सरकार?
3: सरकार से हम, हमारे जो बंगाल में सुरक्षा, नारियों का सुरक्षा, युवा का जो काम, जो यहाँ का जो सबसे बड़ा बेकार का प्रॉब्लम है, वो जो 1 करोड़ का जो नौकरी का दावा, वो मिलेगा हमें. इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में ले आई. ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भूमि है.
0: अच्छा, ठीक है, क्या चाहते हो? जल्दी जल्दी बताइए, क्या
4: चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं.
5: निर्भया का
4: इंसाफ चाहते हैं. इन 10 वर्षों में जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता का मृत्यु हुआ, उसके लिए इंसाफ चाहते हैं. शपथ ले और कारनामा चालू करे. जो हम लोग कार्यकर्ता लोग यहाँ आए हैं, इंसाफ के लिए आए हैं. 10 वर्षों में बहुत बीजेपी कार्यकर्ता का मृत्यु हुआ.
0: ओके, सो विल यू विल हियर अ लॉट ऑफ दिस. चलो जल्दी जल्दी जाओ, शुरू होने वाला शपथ ग्रहण. क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाओ. ऑलराइट, सो एवरीवन स्टॉप्स फॉर अ लिटिल बिट टू स्पीक देयर माइंड बिफोर दे आर मेकिंग देयर वे टू द ब्रिगेड ग्राउंड. द प्राइम मिनिस्टर इज नाउ ऑन स्टेज एंड एनी मोमेंट नाउ द ओथ टेकिंग सेरेमनी इज गोइंग टू स्टार्ट. एनी मोर नेम्स महुआ दैट यू कैन थिंक ऑफ? बिकॉज अगेन वी आर on the one hand talking of, and we were speaking of Nandigram and Shingur. Interesting story, the entire, so if you've got the entire tribal belt being won by the BJP, the entire industrial belt of Durgapur, Asansol, BJP has made massive gains there. To the best of my recollection, barring about 5-6 seats, that entire area has been swept by the BJP. Shingur, which was the bedrock of Mamata Banerjee's rise, Becharam Manna was the MLA last time around. This time he was defeated by the BJP. So it is as poetic as it gets that in that area also you've got the BJP unseating the Trinamool. Keeping that in mind, who do you think could be the professional names that Shubhendu Adhikari will bring or needs to bring in his team?
6: Yeah, Padmaja, this is a very, just like Jayanto pointed out a little while ago, this is the most difficult question, simply because this is a completely, you know, fresh new cabinet. And Shubhendu, apart from Shubhendu Adhikari, there aren't people really who have been part of any ministries anywhere. So they will have to really choose, and therefore, like you said, I mean, like we all mentioned, that they'll have to go, they will have to kind of choose from areas that BJP...
7: As Chief Minister of the State of West Bengal, signed by Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on 8th May 2026. May I now request Shri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister Designate, to take oath before the Honorable Governor.

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार.
2: भय से भरोसा is the transition which is happening now. भय से मुक्ति is the victory.
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है. महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है.
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री.
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट.
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
9: And the battle for the chief minister chair is over, but the big challenges lie ahead for Vijay. He promised a corruption-free government, one that prioritizes good governance. He appealed to the youth, the women, and anyone who wanted a change. The challenge is now to deliver on all these expectations.

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: And the battle for the chief minister chair is over, but the big challenges lie ahead for Vijay. He promised a corruption-free government, one that prioritizes good governance. He appealed to the youth, the women, and anyone who wanted a change. The challenge is now to deliver on all these expectations.

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड to bring back the confidence of industry.
6: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.